0: वन वन टू
1: कानो देखो पूरी काटी यार जुड़ी कानो पेट चीरे काटी नाड़ी भूरी हमारे चीरो साथी काटी यार छुरी हमारे चीरो साथी काटी यार छुरी जो मेर दम्ब भेंगे
2: तुझे बड़ाई करी
1: आमरा आमरा मेडिकल कॉलेजे पूरी।

0: the warning of strong winds. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
1: Flood conditions in Odisha continue to improve as water levels in all major rivers, including the Mahanadi, have receded. However, fresh heavy rainfall has caused widespread waterlogging in Bhubaneswar. Relief and restoration work is continuing in the flood-affected districts, even as authorities remain on high alert. We have more from our Odisha correspondent.
2: At present, 8 sluice gates of the Hirakud Dam remain open to regulate the reservoir level. Even as water levels fall, the hardships of flood-affected people continue, with restoration of normal life still a major challenge. Meanwhile, continuous heavy rain since last night has disrupted normal life in the capital city Bhubaneswar. Several roads and low-lying areas in the city remain waterlogged, with rainwater entering many houses and damaging household belongings. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy rainfall in Keonjhar and Mayurbhanj districts today, and a yellow alert for the remaining districts. Rainfall alerts have also been issued for 20 districts tomorrow, though rainfall activity is expected to decrease over southern and western Odisha. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: On to sports, Indian javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, secured places in the final rounds of their respective events at the World Athletics Under 20 Championships in Eugene in the USA. The finals will be played on Sunday. Hockey India today announced the 18-member Indian junior women's team for the AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August the 30th to September the 13th. The squad comprises 18 players along with two alternate players and will be led by midfielder Khaidem Shlema Chanu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha resumes proceedings amid opposition ruckus over several issues. Rajya Sabha adjourned till 2:15. Bombay High Court convicts former Tehalka editor Tarun Tejpal in 2013 sexual assault case. Amarnath Yatra resumes after day-long suspension due to security reasons. Orange alert issued for very heavy rainfall over Uttarakhand, Jharkhand, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa today. Hockey India announces 18-member junior women's team for AHF Asia Cup 2026 to be held in Mochi, China from August 30th. Javelin throwers Ashish Yadav and T. Dharanidharan, along with discus thrower Amanat Kamboj, storm into finals of World Athletics Under 20 Championships. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Nikhil Kumar. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित. बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया. अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू. उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट. हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की. और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई. अब समाचार विस्तार से. संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई. लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं.
4: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमशः 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे. इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए. ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है.
3: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो

0: प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक 15 मिनट तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
1: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान 2 चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर

0: के लिए जी रहा हूं और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, दैट शुड बी द कमिटमेंट।
1: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
3: अब तक 470,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी। से इश्फाक शाह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
4: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गदेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
5: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, वाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
4: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्णाकुलम, कोट्टायम, आलापुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक

0: संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं, वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित, पोषित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले AHF जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। बंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मैत्रीर प्रथम अधिवेशन शेष हल। আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হবে ভারতীয় সময় বিকেল 3:30 এবং বাংলাদেশ সময় বিকেল 4:00। এখন স্টুডিওর ঘড়িতে ভারতীয় সময় 2:30 হয়ে 18 সেকেন্ড এবং বাংলাদেশ সময় 3:59 সেকেন্ড।

0: শুনছিলেন বাংলা ব্যান্ড। এখন সংবাদ।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना

0: और रोजगार सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
1: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे पे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बायता चेरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना कंप्रेस बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
3: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल है जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
4: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्व

0: महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
1: 19 लाख हाउस होल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
2: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
3: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं, जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
0: 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। ये रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशारानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
5: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5

0: सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और ये एक जन आंदोलन में बदल गया है। ये राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रुपए पर बंद हुआ।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को POJK में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: আকাশবাণী মৈত্রী অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভে 505 মিটারে, অর্থাৎ 594 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন কথায় গানে, উপস্থাপনায় শ্রীরূপা মুখোপাধ্যায়। আজকের কথায় গানেতে আলোচনা করব নদিয়ার লোকসঙ্গীত নিয়ে। হ্যাঁ, সারা বিশ্বে বিভিন্ন জায়গায় লোকসঙ্গীত আলাদা, দেশভিত্তিক আলাদা হয়ে যায়, রাজ্য ভিত্তিক আলাদা হয়ে যায়, আবার রাজ্যের মাঝখানে বিভিন্ন জেলায় জেলায় আলাদা হয়ে যায়। কারণ আমাদের বাংলা ভাষারও আমরা পড়েছি 11-12 কত রকমের উপভাষা ছিল না, তাই আমাদের এই গ্রাম বাংলায় কিছুটা হাঁটলেই ভাষা পরিবর্তন হয়ে যায় এই বাংলারই। তাই জন্য গান, সেই গানের চর্চা, সেই গানের জীবনযাপন, সেই গানের আঙ্গিক সংস্কৃতি সবটা জেলাভিত্তিক প্রভাব ফেলে, জায়গাভিত্তিকও প্রভাব ফেলে। নদিয়া জেলার লোকসঙ্গীত মূলত শ্রী চৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণব ধর্মের ভাবধারাকে বাউল পুকির সাধনায় গ্রামীণ সংস্কৃতির এক অপরূপ তত্ত্বের সঙ্গে জুড়েছে। নদিয়ার লোকসঙ্গীতের যদি একটু বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি, তাহলে দেখব এটি মূলত ভাবগীতি এবং পদাবলীর গান, বোলান গান, বাউল এবং দেহতত্ত্বের গান, পাল্লা এবং তর্জা গান এবং অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মধ্যে যেমন কবি গান, জারি গান, ধুয়ো গান, শাক বাজিয়ে বিয়ের গীত, এগুলো নদিয়ার লোকগীতির মধ্যে দেখা যায়। আর এই নদিয়ার লোকগীতির কথা বলতে গিয়ে আজকে দুটো নদিয়ার লোকগীতি শোনাব। প্রথম গানে অর্জুন খ্যাপা এবং পরের গানে প্রফুল্ল বিশ্বাস।